बच्चा नलायक हो जाएगा ते मेरा नाम डुबेगा, मेरे नाम नु कलंकित करेगा, ओनू गुस्सा आउंदा चलिया जाए। ते मां ए भी वेख रही है कि इनू गुस्सा आ रहा, ते फिर कहंदी देखो मैं तुहानू कुछ नहीं कहना, हुण कुछ नहीं कहना, जे तुसीं बच्चे नु कुछ कहना ते फिर मैं तुहानू कुछ नहीं दसदी। मैं तुहानू यह बेनती करनी है भी ये ठीक है, उन्हें समझाने की लोड़ है, उन्हें पहुंचाने की लोड़ है, पर आखिया जे कुछ ना भाव मारिया जे ना। और ऐसा भी कहते ने कि मां की ममता ऐसी है ये बच्चे नू आप ता मार लेंदी है, किसी नू कौड़ा वेखण भी नहीं देती। इथों तक जिहदा अधिकार है बाप नू भी कहती हथ ना ला। ते कई बार यूं लगता है जिवें सतगुरु मां प्यो बन के साड़ी एक हरकत ते निगाह रख रहे। साहिब पंचम पातशाह नादान दीयां शिकायतां भी कर रहे ते नाल ही कहिंदे ने कहना कुछ ना, इहनूं हौली हौली समझ जाएगा, बख्श रहना, कहना कुछ ना। आपां पढ़दे आ ना, कहिंदे ने शिकायत करदे ने, देखो रतन साढ़ कौडी संग रचे, इह कोई चंगी गल इहदे वास्ते। नाम रतन नूं नहीं व्याजदा ते कौड़ियां कठियां करदा फिर। रतन छाड़ कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, सच दी बजाए झूठ दा पल्ला पकड़दा, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो कुछ छड़ जाना है उन्हूं पक्का समझी बैठा, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, सारी भजनठ दौड़ ओहदे वास्ते करदा जिन्हूं छड़ जाना। संग सहाई तिस पर हरे, प्रभु जो संगी सहाई आ उन्हूं छड़ी रखता है, उहदा ख्याल नहीं करता। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तां स्यों बलुआ कह ग्रह भीतर बसे, रेत दे घर बना के उस च बैठा है, अंध केल माया रंग रसे, दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत, मूर्ख नू काल ता चेते ही नहीं आउंदा, काल ना आवे मूड़े चीत। पर नाल इक होर भी गल कहिंदे, जिसले सारियां शिकायतां लाउंदे ने, संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तां स्यों बलुआ कह ग्रह भीतर बसे, अंध केल माया रंग रसे, दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत। ऐसी बिरती काम क्रोध इन्हां चीजां च परचिया होया। पर एक गल कहिंदे ने कि इहनूं जिवें जाणदे हो बख्श लैणा, अंत च कहिंदे ने नानक काढ लैओ प्रभ दया, वेखणा कितें इन्नियां गलतियां करन वाले ते क्रोध ना कर लैणा, गुस्से ना हो जाण। गलतियां तां बड़ियां करदा है, दसना भी जरूरी है, पर देखना इस ते गुस्सा ना करना, क्रोध ना करना, क्रोध ना करना, मारना ना। जिंदगी साडी दा ख्याल भी है, एक एक हरकत ते निगाह भी रखदे, लेकिन नाल साडे वास्ते रहम दी भिख्या भी मंगी जांदी। उस गुरु दा ज्ञान प्राप्त ना करना किड्डी वड्डी भुल होवेगी जिहनूं साडा इन्ना ख्याल, जिसनूं साडे जीवन दी उसारी दा इन्नी चिंता है, इन्ना ख्याल है। पर कई बार ऐसा होया मनमत दे मारे हुए, जिवें बच्चा आप उधरा होके मां दी गल नहीं सुनदा, इवें असीं कई बारी गुरु दी गल ना सुनी हो। गुरु नूं साडा ख्याल होवेगा, गुरु दी गल दा ख्याल असां ना कीता होवे, बल्कि कई बारी तां मनमत दा मारिया होया बंदा अपनी मत दे हंकार विच गुरु दी गल नूं इन्ना तुच्छ समझण लग पैंदा। ऐसा होया बाप ने बच्चे नूं चुकिया, चुक के उलारा दिता, बच्चे का मूह बाप के मूह के बराबर आ गया, ते बच्चा किलकारी मार के हसिया, कहिंदा पिता जी मैं तुहाडे जिड्डा हो गया। बाप हसिया जोर, बालक बुद्धि कहिंदा मैं तुहाडे जिड्डा हो गया। उन्हें थोड़ा जिहा होर झटका दिता, उपर नूं ला रहा, अपने सिर तो उच्चा किया, कंध ते खड़ा कर दिता, ताड़ी मारदा कहिंदा मैं पिता जी तो उच्चा हो गया। बाप हसदा तू मेरे नाल वड्डा हो गया, तू मेरे नाल सियाणा हो गया, तू मेरे नाल उच्चा हो गया, कंध ते खड़ा है, मैं ही खड़ा कीता,
ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

0: जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उतर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मोहे जल लभ रहे हैं, थोड़े को हजारों यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने, इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़दे जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाली आवाज आ रही सी।
4: कागो हंस करे,
2: कागो हंस करे, कागो हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी दी बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करद ही थोड़े पैर अपने आप तुम उस मंजिल वाल ले जाएंगे जिस मंजिल थोड़े दिल चाहे।
4: कितनी दूर है गोइंदवाल?
2: इथो थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है, उथे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी, असि चलने,
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दादा मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज, सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नानिवे सो सिर कपल उतार, जो सिर साई नानिवे सो सिर की देताए, उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे
5: थाए। ओ साहब जी की गल है पहला, तुसी ने क्या दिता?
4: असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी सारे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना दमड़ा।
5: और चलिए भैने, मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा?
5: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है, तो हो भी चाहिए देखिए, जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना, दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राति लंगर चो ढेड़ पड़ के बार थे दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: तन हो तुसी?
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है, और दर ते जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया, उस अवगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

एतन होती खाक में माड़ी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी दुनिया।

व्यापारी मरना जो दिसे सो काले करना जो दिसे सो काले करना कबीरा तुर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिन सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विच्चों जाए

चले चलना हार बिचारा ले मनो, चले चलना हार बिचारा ले मनो। गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया चिट्ठीनो, जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोजे कर कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुन मरे प्राणी।

मेरे मालिक रहमत कर दे मैनू उन्हां दे चरणां दी धूड़ प्राप्त होवे जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन से मिलाए जियो तू जिथे मिलिया मैनू भी मिला जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दे मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखा जेड़े तुरे हुए ने पहुंचे हुए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जे ओ जेड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहब कहंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल ओ की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात दा मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारनिंग च फर्क है जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देने लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर बैंदा सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़दे ते जिहड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जिहड़े गुरु मार्ग से अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तो निछावर कर दे वारने कर दे कहदे ने अग्न जलाए हुन पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दियो अग च भुन दियो लै उड़े पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दियो सी हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे जिथे कहिंदे ने जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखा दे चरण गुरु के सिखा दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम को डारीए मेरे शरीर की पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दियो मेरे शरीर नूं सवा करके पसम करके।

0: एक पिंडा शाल उठा आंद्रा नहीं घोर शाहूकार का फिर
1: शाबाश शेरा ये माल खा रहे हैं जवान भाई
2: जो कम सरदार
3: अरे जबरा अरे था
0: जो जबरा
4: मेरी बॉडी ता देख रही पागल हो जाएगी
5: मेरी सिंगनी से कालवी देसी की ओर दीवे वालों

0: बटन पह रहे हो? अंत काल के देखे, आज की गल करो, आज की जना करी से लेके जाने हैं और जरा माल लुट के लेने हैं, वो साड़ी कमाई है।
1: ठीक ही कह रहे हैं, सानू मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आओ।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग टूटा गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तोता गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा यह छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टैनिन भर के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

मन करके तन करके मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा। मन करके तन करके अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है। प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता, जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हों की गल करते, गुरसिखा की गल करते हैं, भगतों की गल करते हैं, संतों की गल करते हैं जिन्होंने प्यार किया। प्यार किया तो फिर भरपूर किया, प्यार अधूरेपन की गल हो। जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना है।

नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छोह प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ख्याल का है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल

की परियोजना लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की।

ऐसा सवाल लेके इक वेद गुरु नानक भी अपने कर्ता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावे उस वेले समझिया सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने का हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। ते जदों हिसाब मंगिया गया होवेगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होवेगा, तां गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ए सी ना समझ लोकां दे ख्याल जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता। बेबे नानकी कहिंदी है मेरा गुरु नानक जिहड़ा डुब्या नूं तारन हार है वह आप किवें डुब सकता है, उहदा इह कोई कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे कुल्ले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

अलग अलग हन पर जोत ओहा जुगत साई सह आया फेर पलती। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा ये जो घर विच सुख साधन होण वो भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द का उचारण करदा है उसनू एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इसका महात्म एथे ही बस नहीं अगलिया तुकां विच

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड्डा वड्डा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी

आज पे तिस रब दे उकेला विसरिया जो मन चितना चेते सन से गाली रब दिया।

किसे नु की पता है कदों मरना है, किथे मरना है ते किवें मरना है। इस गल दी खबर ओ भी नहीं पा सके जिन्हां ने काल नू पावे नाल बनिया होया सी रावण वर्गे। किड्डे वड्डे परिवार दा मालिक 1 लख पूत 1.25 लख नाती तह रावण घर दिया ना बाती। ऐडी वड्डी समर्था दा मालिक लंका सा कोट समुद्र सी खाही तह रावण घर खबर ना पाई। इस गल दी किसे नू भी खबर नहीं कदों मरना है किथे मरना है ते किवें मरना है। सैब बाणी विच बख्शिश कर रहे हन कि मरना जरूर है, जो आया है उसने एक दिन जरूर जाना है, पर उना दा मरना भी सफल है जो संसार ते आके देश कौम दी सेवा करके जांदे हन। उना दा आउना भी तनता दे योग है ते संसार तो जाना भी उना दा सफल है, क्योंकि विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगह बैसन पाइए। जो दुनिया दे विच आके संसार दी सेवा करदे हन उना नू दरगाह विच भी ऐसा श्रेष्ठ स्थान मिलता है। तो सैब कहंदे हन उना दा मरना भी सफल है जो संसार ते आके सेवा सिमरन करके जांदे हन अगली किछ खबर ना पाई।

तेह रावण घर खबर न पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ सब

हर एक जंगल समान है, जिस दे दूर दूर तां बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है, ते जे पिछे वेखिए तां कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए, एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है, एक पासे संसार नूं जन्म दे रहा है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है, जिस तरह अनेकां घड़ियां दे विच जल होंदा है, ते सब घड़ियां विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे भरे होंदे हन, ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा होंदा। ते जे कोई कड़ा टूट जावे तां आकाश नहीं मरदा, केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टूटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है, साहब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है, नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ, ओ तां पवने में पवन समाया, पंज तत्तां दा इंसान बनाया। ओ पंजे तत्त जदों वक हो जाते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है। साहब कहते हैं पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोमन हारे की, कमन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ। ये अकाल पुरख वाहेगुरु की रचना है। ये जग ये सारा संसार उस ईश्वर की कोठरी है, रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ कर